अकाल प्रतिष्ठा कर दे तो सोना नाथ अनाथ न मोस तो सोना दानी न मोस तेरे वर्गा नाथ नहीं ते मेरे वर्गा कोई अनाथ नहीं तेरे वर्गा कोई दानी नहीं ते मेरे वर्गा कोई भिखारी नहीं एक एक पंक्ति बड़े प्यार नाल सारे मिलके आके शोर किया।

तू उतना चिर ही सुखी बस सकेंगी जितना चिर जीव आत्मा तेरा साथी तेरे नाल है। जदों तेरा साथी जीव आत्मा उठ के चल पवेगा तदों ही काया तू मिट्टी विच रुल जावेंगी जो सह प्रमाण कर रहे हैं।

एक आया जितना चिर तेरा खसम जीव आत्मा तेरे घर विच वसदा है सारे लोकी तेनू जी जी आखदे हन सारे तेरा आदर सत्कार करदे हन पर सह फरमाउंदे हन हे काया हे जिंदे जदों तेरा निमाणा कंत जीव आत्मा उठ के तुर पवेगा तदों कोई भी तेरी बात नहीं पुछेगा जो साहेब अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

सतगुरु रायपुर विच आए चरण पाए बेंत संगतां ने दर्शन कीते बख्शा हासिल कीतियां ता इन्हां दोनां नूं पता लगा सोना ते मोहना के साहिब कलगीधर पातशाह इत्थे आए हन चरण पाए हन क्यों ना असीं वी चल के दीदार करिए। मन विच उबाल उठिया दोनों पचे के चल के साहिबां दे दीदार करिए। पर जिस वक्त साहिबां दे दीदार करन आए पर साहिब अगे नहीं हन दर्शन नहीं होए ता फिर कन्ना विच ओ आवाज पई कि ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त साहिब वापस जान लगे ता ए दोनों जने अद्धा कु मील अगे जाके खलो गए कि एथों दी साहिब लंघन गए ता असी दर्शन कर लवांगे। पर संगत ता उस रस्ते तो लंघी पर सतगुरां ने अपना घोड़ा मोड़ लिया खेतों ने रस्ते दी लंघ गए ता फिर कन्ना विच ए आवाज गूंजी ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता हुण इन्हां दे मन विच ए निश्चा हो गया कि सचमुच सतगुर दर्शन नहीं देने ता दर्शना दी होर लालसा वधी मन विराग विच आ गया ता अरदास कीती पातशाह एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकदे कृपा करो एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकदे एक पल जुगां दे समान बीत रहा है जो सहबी अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

साहेब छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्ने छिलछु है न कोई रंग मजीठो निकले अड लहे न सोई वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई काया हंस विछुन्या जिसको न सथोई बेमुख सुके रुख ज्यों बेमुख

हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यू चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने न विच समावे।

जैसे घाव घायल कै जतन कै नीको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै नीको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत नांगो तो न होए तो ठेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

कपूर ना चखई दुर्गंध सुखावे, काओ कपूर न चखई दुर्गंध सुखावे, हाथी नीर न वालिए सिर छार उड़ावे, तुम्हें अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे, निंदक नाम भी होने सत्संग ना पाए, मूर्ख सच न जाननी, निंदक

सिर तां कटवा दिता, पर उसका हाथ फड़िया सी जेड़ा, वो मुड़ के किसे भी हिंदू दे मत्थे तो तिलक ना पूंज सके। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना,

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे राय पोए की तलवंडी का राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरेगंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हुए और सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस्सा दिलाई सत करतार ए सत करतार। अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया। जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंढ ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हां तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखदे ने माता जी दियां अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पाला है आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रख दी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच ए खबर सारे शहर विच फैल गए संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे, बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो, बड़ी वैराग विच है तन। गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे, ता बेबे नानकी छत तो थले उतरे, भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया, कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन हे नहीं हो सकता। सात संगत, ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जिहड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जिहड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जिहड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके, सात संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने

जद इतने बचन कहे भैन जी ए बेबे नानकी तुसी वड्डे हो तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ते नहीं हो सकदा। सत्संग एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है। इन्हां गल्लां नूं कोई मन्ने भावे ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है। हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा मरदाने हुण तुसी जा के भाई अजय राम जी नूं लै के आओ। शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाण का सुभाग प्राप्त हो रहा है। पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे तो पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले। साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके। धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन। अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो। धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ओह ही जानता है जिसने ये प्यार किया। भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पराई जां के अंतर दर्द ना पाई। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए इको ही गल नजर आती। भगत रविदास वो भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहंदे ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले तीर के ए प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने

हे निरंकार, हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, तू सारियां ते मेर कर, सारी सृष्टि ते मेर कर। तू मालक है, तू प्रतिपालक है, तू राखा है सबे जी समा, तू सारियां ते मेर कर। जो ईर्खा, द्वेष, वैर, विरोध जो मना च अग लगी हुई है दूर कर, सारे अनु समत बख्श। जगत सड़ रहे है, अगां लगियां हुई ने, तू कृपा कर, तू मालक है सारियां ते कृपा कर। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे जिते ले हो ओबा, तू सारिया की मेहर कर। सारे तेरे ने, तू सारिया की कृपा कर। ये अरदास है कि अन्न पानी मुच उपाए, ये पदार्थ सारिया नू दे, सारिया की कृपा कर। दुख दलिद्र भन दर सारिया का दुख दूर कर, दलिद्र ये सब दूर कर। तू सारिया ते मेहर कर, मेहर कर।

जे अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहन चंदन सुगंध ग्रह सोहन चंदन सुगंध